0: बी एंड सी फाइव प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम, प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुजर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम। बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
1: Packed for the trip? Gifts? Passport?
2: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
1: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
2: Simzy?
1: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
3: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
4: T's and C's apply.
5: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट

अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए।

साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वडियाई।

चाहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुग

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डरर खुद।
2: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है।
3: I'm Dr. संदीप चक्रवर्ती, I'm a psychiatrist.
4: One more gruesome murder.
1: दोनों विक्टिम्स 20s में, दोनों फीमेल। He's not going to stop. There are many more in danger.
5: Karishma Kapoor in and as Brown now streaming on Hindi Z5.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
7: फोन 0208574।

0: ना जवाद भाई, खेले ओवेज
1: चांद से पर्दा कीजिए,
0: ये गाने मालती
1: चुराना ले तेरे कानून.
0: What is चेहरा कानूर by the way? Someone translate.
2: Tony, today's answer is चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर. मेरे हम नवा मेरे हुजूर कीजिए. टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर.
0: ये गाने Are you not good? Oh, why would you do that to me? Left me hanging. Well done. And by the way, Barbara said he had a shower this morning.

0: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम।
1: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम।
0: It's अंताक्षरी टाइम विद खुश।

0: annum based on £1,200 credit limit. T's and C's apply.
1: Step into the new grand showroom of Gardjell's Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
2: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gardjell's Couture, now open 7 days a week.
1: Gardjell's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
3: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
4: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डरर खुद.
7: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है.
8: I'm Dr. Sandeep Chakraborty, owner psychiatrist.
9: One more gruesome murder.
6: दोनों विक्टिम्स 20s में, दोनों फीमेल. He's not going to stop. There are many more in danger.
10: Karishma Kapoor in and as Brown, now streaming on Hindi Z5.
11: 105 सुपर हिट शोज पछि हवे लंडन मा आवी रह्यो छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लाइने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडेज 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
12: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
13: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
12: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
14: गड़बड़ घोटाला छे प्रॉब्लम्स मोटा छे पर बधु ऑलराइट छे
15: मैं छे ने बैक टू बैक थ्री मूवीज जोई ली थी
14: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी केओस विद वीरज गिलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधु ऑलराइट छे
15: बेहतर कलाक में पाछो आवी जस ने पछि बधु ऑलराइट थई जसे
14: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियास इंस्टाग्राम हैंडल
16: एवू लागे छे के पिक्चर चाल छे
17: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
18: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
17: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
18: गारंटेड
17: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
18: फोन 02085748410
17: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: दिस वीक्स नंबर 1 The Leica Radio Chart Show. Tune in every Friday at 6 p.m. on Leica.

0: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा
1: है। I'm Dr. संदीप चक्रवर्ती, owner psychiatrist.
2: One more gruesome murder.
3: दोनों victims 20s में, दोनों female. He's not going to stop. There are many more in danger.
4: Karishma Kapoor in and as Brown, now streaming on Hindi Z5.
5: ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 0208-767-7627.
6: Okay, this is Donny Brasco from The Breakfast Show here at Lyca Radio. Remember, listen to me live from 6 o'clock in London, and then from 7 o'clock we go live over in Manchester as well.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
1: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
2: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेफ कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
3: धार्मिक आस्था अने भक्ति साथे जोड़ावानो सुंदर अवसर मां कृपा फाउंडेशन यूके लईने आवी रह्यु छे श्रीमद भागवत सप्ताह 7 जून थी 13 जून 2026 सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे श्री विपुल कृष्ण शास्त्री जी जूनागढ़ वाला वेन्यू फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2 10 स्टोनफील्ड वे साउथ राइसली HA4 0JS रोज सांजे 6 वाग्या पछी प्रसाद नी व्यवस्था रहशे डोनेशन अने वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो रश्मिशा 0777-228-7509
4: आ सप्टेम्बर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे
5: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
4: यूरोप ना 3 થી 9 દિવસ ના टूर
5: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
4: दर्शन पण अने यूरोप पण
5: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर साथे
4: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स
5: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Har case mein kam se kam ek witness to hota hi hai. Murderer khud.
9: Kolkata mein hamare gharon ke aas paas ye sab ho raha
10: hai. I'm Dr. Sandeep Chakraborty. Own a psychiatrist.
11: One more gruesome murder.
12: Dono victims 20s mein. Dono female.
13: He's not going to stop. There are many more in danger.
14: Karishma Kapoor in and as Brown, now streaming on Hindi Z5.
15: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
16: Atif Aslam, live in the UK.
15: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
16: Book your tickets now at AXS.
15: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
16: Exclusive radio partner, Leica Radio.
17: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
18: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730098823
19: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS Swami Narayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: Explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TLCs apply.
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
2: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
3: Mum always said, Beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
4: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
5: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
6: It's India versus Pakistan, and this is India's lineup.
7: इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर. हाई स्पीड एक्शन, हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स, बिल्कुल अनमिसेबल. अपनी टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk. India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
6: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
8: Next, Radio Wally's roller coaster is up next.
9: On Leica Radio,
8: London, Raj Baden.
10: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: time for everyone's favorite ride, the Radio Wally roller coaster.
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
2: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
3: Surinderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBS.

होने लगी, एक रात में हिला उसे होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है। कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पीएस के जो घोटों से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी। मैं कभी बहुत ज्यादा सैड, कभी बहुत ही फनी, मेरे गोयाट के बैग कानों में टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट टिफनी। टिप्पणी पे ना करो टिप्पणी, तेरे जैसे कहां से मैं आंट तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी चलता है उसकी सरता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, 3 रात लगातार मैं जागता फिरूं, के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है, मैं नाचता फिरूं।

करने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: कितने आ गए ऐसे
1: पता नहीं यार करता की
0: मैंने ना कोई कुड़ी दी चक्कर होनी है
2: कुड़ी ने एदा मन मोलिया ते मेरा दिल घुलया
0: सगी
3: कुछ कह यार
2: अब पैसा सारा कुछ पता लग

0: Leica Radio.
1: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
2: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
3: Atif Aslam live in the UK.
2: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
3: Book your tickets now at AXS.
2: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Attention meat lovers of Rayner's Lane.
5: This is huge.
4: Thadi Kalal is opening in Rayner's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
5: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
4: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
5: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rayner's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
4: Thadi Kalal, Rayner's Lane. There is only one. Gold Bank London teams up for the Atif Aslam concert in association with Leica Radio Network. For you to win a 5 gram gold coin. If you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
7: गारंटेड
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
7: फोन 02085748410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहो छे।
9: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
8: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
9: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे।
8: दर्शन पण अने यूरोप पण।
9: सीट्स जल्दी भराई रही छे। आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
8: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
9: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
0: द ग्रेटेस्ट एशियन लव सॉन्ग्स अक्रॉस द लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: This is Leica Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
4: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayana ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
7: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: The biggest Asian love songs in the capital.
9: Leica Radio.